अक्वाम जहां में है रकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तिजारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमजोर का घर होता है गारत तो इसी से, अक्वाम में मखलूक के खुदा बढ़ती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे।

खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं।

बड़ा सुंदर प्रसंग है रहीम के बारे में। रहीम कृष्ण भक्त थे, मुसलमान थे और अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न थे। पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान थाना। उनकी एक विशेषता बहुत कम लोग जानते हैं कि वे स्वभाव से बड़े महान दानी थे। बहुत से दानी हुए, रहीम जैसा दानी नहीं हुआ।

इस भजन में यह वर्णन है कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है, एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं कि वो भूल जाता है भगवान का नाम लेना, वही एक एक अवस्था को लेकर समझा।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: दिस अक्टूबर बॉलीवुड मीट्स भंगड़ा इन मैनचेस्टर। In-house Productions presents Bollywood Meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, Hip Hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October from 9 PM till late at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 FM और 100.6 FM पर आप पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुन सकते हैं और डेब पे हमें ब्रेडफोर्ड कीतले इल्कली स्किप्टन लीड्स हेलीफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अक्रिंगटन मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में आप सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं आप सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप www.sunrise.radio पे सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक दो बजे तक, मेरे जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। फैंसी अ बिट ऑफ फन, विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रश। Test your film knowledge with our Bollywood quiz or discover which Bollywood character you are. Play now at sunrise.radio and join the free Sunrise Listeners Club to unlock even more. तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
1: To the hour brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में, और अब चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:17, यानी कि 17 minutes past 11, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। हीरा खान साहब, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपने दोस्तों के लिए सुनना चाहते हैं, स्पेशली तारिक जुल्फी और मलक इसहाक साहब के लिए, और जरीना सबा आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। तो आपके नाम भी होगा गीत, और उसके बाद जनाब दीगर जितने दोस्त इस वक्त रेडियो की निशात को सुन रहे हैं सबके नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Experience something truly spectacular as the internationally renowned flower carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। अब चलते हैं अगले गीत की जानिब। शिबीर भाई इस्लामगढ़ वाले, आपने फोन किया, शुक्रिया, आपके नाम करते हैं। और उसके बाद गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम करते हैं। प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम, साइमा जी आपके नाम और दीगर तमाम सुनने वालों के नाम।

जी दोस्तों, ये प्यारा सा गीत था, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब हमें छोटा सा गीत चाहिए जो हमें कमर्शियल ब्रेक तक आसानी के साथ ले जाए। तो जनाब खान भाई, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। आपने कहा कि आपके साथी इस वक्त आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनमें है जनाब आतिफ साहब, बशारत साहब, फारूक साहब और शाह जी, और साथ में बशारत साहब। जी बिल्कुल, बशारत साहब, फारूक साहब और आतिफ साहब और शाह जी आपके साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई गीत। तो ये गीत आने वाला उनके नाम करेंगे। गुलाम भाई आपके नाम, और शबीर भाई इस्लामगढ़ वाले आपके नाम भी, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम, मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम जनाब, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर और इफराज, उनके नाम भी। तो चलते हैं, छोटा सा गीत सुनते हैं, बड़ा मज़े का गीत है, छोटा सा गीत है लेकिन मज़े का गीत है जनाब, आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 11:45 से, यानी कि 11:45, और वक्त हो चुका है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा प्यारे दोस्तों के लिए। दिनेश भाई, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया, अच्छा लगा। और उसके बाद अब्दुल क्यूम साफ राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, आप जनाब आज पाकिस्तान जा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला आपका ये सफ़र बहुत ही प्यारा गुजारे, अच्छी यादों के साथ गुजारे। और उसके बाद जनाब आप जहाँ अपने जहाँ भी रहें सुकून से रहें, यानी कि अपने वतन में जब बंदा जाता है सुकून में ही रहता है, क्योंकि चंद दिनों का या चंद अफ्तों का ही टूर होता है, तो उसमें इंजॉय बंदा करता है। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर रखे, तो खूब इंजॉय कीजिएगा। जब भी आप जाते हैं, अब्दुल क्यूम साहब बहुत इंजॉय करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला आपको खैरियत के साथ ले जाए और खैरियत से वापस भी लेकर आए। तो जनाब बहुत शुक्रिया, आपसे रब्ता रहेगा। तो जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपने सभी सुनने वालों को सलाम अर्ज किया, सब दोस्तों को सलाम अर्ज किया, तो जनाब आपका सलाम पहुंच गया। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और शैतानी वाला गीत जो है वो आपके लिए होगा कमर्शियल के बाद। और उसके बाद खान भाई आपने भी फ़ोन किया, आपके साथ पूरी टीम है जनाब, आतिफ भाई हैं, बिशारत भाई हैं, फारूक भाई हैं, शाह जी हैं, आप सभी दोस्तों के नाम भी, और ग़ुलाम भाई, तारिज़ुल्फ़ी साहब, हीरा साहब, और सफ़ीउल्लाह भाई, और चौधरी मुजफ्फर साहब। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: तो अभी आपने मुकेश की आवाज में गीत सुना और मुकेश साहब आप टू लेट हो गए हैं, आप ये कहते कहते कि ना जाइएगा क्योंकि अब्दुल कयूम साहब तो जा रहे हैं यार, वो तो पहले टिकट कटवा लिया था, उसके पहले बोलते थे शायद वो सोचते ना जाते शायद, पर कोई बात नहीं अब टू लेट हो गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई और पुराना गीत सुन लें, आज लगे हाथों एक और पुराना गीत सुनते हैं और जो पुराना गीत हो लेकिन होना मज़े का चाहिए, क्योंकि हमें आबिद भाई आपने फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब आपने, बहुत अच्छा लगा आबिद भाई जब आपने कहा आमिर भाई मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि मैं भी यहीं होता हूं। तो जनाब असल में क्या है कि आजकल वो कह रहे होते हैं, पता नहीं सही है या गलत है, गलत ही होगा, लेकिन मुहावरा एक बना हुआ है, बात बनी हुई है कि यार बादाम खाने से जो है ना वो याददाश्त तेज़ होती है, दिमाग जो है ठीक रहता है, और आजकल बादाम जो है ना वो मैंने खाने बंद किए हुए थे, कोई ख़ास वजह नहीं थी, वैसे बंद कर दिए थे, तो इसलिए शायद दिमाग सही काम नहीं कर रहा और याद नहीं रहा कि मेरा एक भाई भी है इधर, वो भी सुनता होता है रोज़, और फिर क्या है काम पे होते हैं तो मैं काम वाले लोगों का बड़ा ख्याल रखता हूँ, क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा उनके बॉस भी बड़े डाढ़े होते हैं जनाब, तो वो फ़ोन नहीं करने देते, वो पसंद नहीं करते कि मेरा स्टाफ फ़ोन कर रहा हो ना किसी को, तो इसलिए फिर जनाब मैं गाने लगा देता हूँ ताकि उन्हें फ़ोन ना करना पड़े। तो एनीवे ये गीत आबिद भाई, गुलाम भाई, सफ़ीउल्लाह भाई, चौधरी फरियाज साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, खान भाई और दिनेश भाई, सभी दोस्तों के नाम, मज़े का गीत है, इंजॉय कीजिएगा।
1: तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,

जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सुनला रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में आपके लिए अच्छे अच्छे गीत जो हैं वो प्ले किए जाएं, बशर्ते कि आप भी हमारा साथ निभाइएगा। फोन भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको प्रोग्राम कैसे लग रहा है। गुलाम भाई, खबरों के वक्त आपने फोन किया, बहुत अच्छा लगा अपने भाई।

0: अब अभी प्यारे से गीत आने वाले हैं, आप के नाम करेंगे, आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम करेंगे। गुलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। आबिद भाई बहुत शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का, अच्छा लगा आपसे भी बात करके। आप के नाम, आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम, काफ़ी गीत आएंगे, सुनते रहिएगा। और नसरीन साहबा बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, और आपके नाम भी गीत करेंगे। खान भाई आप के साथ इस वक्त जनाब जो दोस्त हैं उनके नाम ज़रूर गीत करेंगे थोड़ी देर के बाद, यानी ये भूले नहीं हैं हम आतिफ भाई, विशाल भाई, फारूक भाई और शाह जी को, तो उनके नाम भी करेंगे। आप काम कर रहे हैं तो चलते हैं दोस्तों। अब ये प्यारा सा गीत सुनते हैं अलका यग्निक और विनोद राठौर की प्यारी सी आवाज़ों में, आप सभी सुनने वालों के नाम, तो इन्जॉय कीजिएगा।
1: Hit of the Hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा हिट ऑफ द आवर का गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:13, यानी कि 12 मिनट्स पास्ट, माज चाहते हैं 13 मिनट्स पास्ट 12। और इसके साथ ही द सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड्स 2026 आर कमिंग सून, सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। Voting will be exclusive to Listeners Club members, so join free now at sunrise.radio and keep listening for more details. तो चलते हैं दोस्तों अब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी, आपके नाम गीत होगा और आपके साथ साथ और एक जगह आप काफ़ी सीढ़ियाँ काम कर रही हैं। इकरा जी आप सुनना चाहती हैं नजमा, इफ़त, नाजिया, मीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए, तो आपके नाम भी गीत होगा और आपके साथ साथ दीगर जो दोस्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम भी होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
5: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
4: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
5: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
4: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
6: You are listening to

जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। शकीर भाई, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब तनवीर अख्तर साहब, आपने फोन किया, शुक्रिया फोन करने का। आपके नाम आने वाला गीत करते हैं। उसके बाद वाजिद भाई एडर्सविल से, आपने फोन किया, शुक्रिया फोन करने का। आपके नाम भी करते हैं। और कमरान भाई, आपने भी फोन किया, शुक्रिया फोन करने का। आपके नाम भी करते हैं आने वाला गीत। और सभी सुनने वालों के नाम करते हैं जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं। और गुलाम भाई, आपके नाम भी अच्छा गाना है, बड़ा चला था ये भी गाना। थोड़ा सा कुछ पागल पागल कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बरकैफ खान भाई, आपके नाम भी, आतिफ भाई, बिशारत भाई, फारूक भाई, शाहजी आपके नाम भी, आबिद भाई आप के नाम भी, जनाब आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। लता जी और उधर नारायण की प्यारी सी आवाज़ों में दिल तो पागल है। और प्यारी बहना जीत कौर, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा अपनी बहन से बात करके, आपने जनाब बात की तो दिल खुश हो गया, बहन की आवाज़ सुन के, बहन की बातें सुन के। तो आपके नाम भी गीत होगा कमर्शियल के बाद, और कमर्शियल के बाद कोशिश करूँगा कोई पंजाबी का गीत जो है वो प्ले कर दूँ। तो अब क्या है कि जो हमारे जो सभी दोस्त हैं जो पंजाबी के गीत पसंद करते हैं, उनके नाम भी करेंगे। आबिद भाई आपकी जानिब से आपके सारे स्टाफ के नाम करेंगे। तो जनाब साथ में खान भाई हैं, बिशारत भाई और आतिफ भाई और फारूक भाई और शाह जी, आप सभी दोस्तों के नाम गीत करेंगे। और आपके साथ साथ जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दत्ता, उमेर, बाबर, इफराज, सब के नाम करेंगे जनाब। और कोशिश होगी कोई अच्छा मस्ती भरा गीत जो है वो आप दोस्तों के लिए पेश किया जाए। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा गीत हम प्ले करते हैं। तो एनीवे कमर्शियल के बाद ही आप गीत सुनेंगे, पता लगेगा। तो चौधरी मुजफ्फर साहब और जिगर दोस्तों के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
2: No, sorry, mate.
3: No, we don't have that part.
4: Have you tried down the road?
5: We can get it in, but it won't be for a few days.
6: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileover.
7: ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
8: ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
7: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
8: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ, ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 ਪੌਂਡ, ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
7: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
8: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9, ਟੈਲੀਫੋਨ 01274488935।
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

जी दोस्तों, अभी आपने दिलेर मेहंदी की प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गीत सुना और भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर से आपने फोन किया, आपकी ब्रेक टाइम हुई और आपने ब्रेक टाइम पे फोन किया, प्रोग्राम सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था आपको, बहुत शुक्रिया मेरे भाई और अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं आप और बड़े प्यारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बड़ी इज्जत देते हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके नाम करेंगे अब जो नेक्स्ट गीत आ रहा है। और उसके बाद इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी, आपके नाम भी। और इस वक्त तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी करेंगे और दीकर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी करेंगे, इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और इन्जॉय करते हैं।

0: जी दोस्तों साथियों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और यकीनन आप दोस्तों ने इसको पसंद किया होगा। कुमार सानू और अलका याग्निक की प्यारी सी आवाज़ों में ये आपने गीत सुना। और दोस्तों अब कमर्शियल का टाइम आने वाला है और कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है। और पुराना गीत किसके नाम होगा जनाब? भाई रुखसार अहमद साहब मचसर से आपके नाम होगा और वाजिद भाई एडर्सफील्ड से आपके नाम होगा, गुलाम भाई आप की जन्म से आपके स्टाफ के नाम, आबिद भाई आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम और खान भाई आप के साथ आतिफ बिशारत फारूक और शाह जी हैं उनके नाम भी। और उसके बाद जनाब हीरा खान साहब, तारिक जुल्फी साहब, सफीउल्ला भाई और तीन शहजादे बाबर शाह पे, विशाल तली, सिकंदर अली, आरफ अली उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी। और जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम भी करते हैं। और प्यारा सा गीत होगा रफ़ी साहब की आवाज़ में और ये गीत जो है जावेद मीर भाई जो हैं उनके नाम भी करेंगे और उसके बाद नदीम मंसूर साहब जो हैं उनके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्दा रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम भी करेंगे। तो चलेंगे पहले टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:44 यानी कि 44 minutes past 12। तो जनाब जैसा कि मैंने कहा कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद आप सदाबहार पुराना गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनेंगे, उसके बाद ही दोस्तों आपसे मिलते हैं। हमारा और आपका साथ जो है वो 2 बजे तक है। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें या किसी गीत के साथ अपना नाम जोड़ना चाहें तो ज़रूर आइएगा, आपके लिए लाइनें खुली है। नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
4: We love Sunrise Radio.
5: The greatest station, radio station in the world.
6: Sunrise Radio.
7: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
8: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
7: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
8: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
9: Official media partner, Sunrise Radio.

बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जनाब मोहम्मद रफ़ी मरहूम की प्यारी सी आवाज़ में आप दोस्तों के लिए प्यारा सा गीत पेश किया, और अब जो आने वाला गीत है ये भी बहुत ही प्यारा है और ये फेवरेट है हमारी प्यारी बहना सादिया जी का। उनके नाम करेंगे, अजरा जी के नाम करेंगे, गुलाम भाई आपके स्टाफ के नाम, और इसके साथ साथ आबिद भाई आपके स्टाफ के नाम भी करेंगे, भाई रुखसार अहमद साहब आपके नाम भी करेंगे। बड़ा प्यारा गीत है। और ख्वाजा महबूब साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया ख्वाजा महबूब साहब, आपके नाम भी करते हैं इस गीत को आप। ये बहुत ही प्यारा गीत है, आप दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ। नदीम और अलका यग्निक की आवाज़ों में है। आपने कई बार मेरे प्रोग्राम में ये गीत सुना और आज मन कर रहा था इस गीत को सुनना, फिर सुने। तो जनाब आप दोस्तों के नाम करेंगे इस उम्मीद के साथ, आप सभी जो दोस्त हैं इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं इंजॉय करेंगे। और इसी गीत को इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त हैं उनके नाम भी। मलिक इम्तियाज़ साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये गाना भी बहुत ही प्यारा है। और आप के साथ साथ इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर और इफ़राज़ के नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं नदीम और अलका यग्निक की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत। इसी गीत को कमल साहब आपके नाम भी करेंगे।

दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी प्रोग्राम का तीसरा जो हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है, इसमें भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश किए जाएंगे। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं जनाब, अब प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं। अरशद महमूद की प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा गीत है। गुलाम भाई, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से अभी तक मुझे हंसी आ रही है, अल्लाह खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यारे भाई हैं आप, बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमेशा मुस्कुराते रखे। तो आपके नाम, आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम और सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त

0: सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चलिए अर्शद महमूद की आवाज में गीत सुनते हैं और आप दोस्त एंजॉय कीजिएगा इस गीत को।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: अरशद महमूद की प्यारी सी आवाज में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:13, यानी के 13:01। तो जनाब चलेंगे अगले गीत की जानेब। गजाला जबीन बहना रोशन से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम गीत करेंगे और ग़ुलाम भाई आपकी जानब से आपके स्टाफ के नाम करेंगे और खान भाई आपने कवाली सुनना चाहिए तो माजी चाहते हैं आपको कवाली तो नहीं सुना सकते क्योंकि कवालियाँ लंबी होती हैं और फिर अब इतना टाइम नहीं है, प्रोग्राम के आखिरी आवर में आ गए हैं। बल्कि आपको मैं फिर कवाली की बजाय जनाब आपको एक गुरदास मान की आवाज़ में धमाल जो है वो ज़रूर सुना सकते हैं, वो आपको सुनाएंगे गायब गायब में, वो अपने प्रोग्रामों में उसको शामिल करता हूँ तो वो जो है वो आपके लिए ज़रूर मैं प्ले करूँगा। जब आपस की कमर्शियल आएगी उसके बाद जो होगी वो धमाल वो आपके नाम ज़रूर करूँगा, तो आप सुनते रहिएगा। और उसके बाद इसी गीत को प्यारी बहना सादिया जी अजरा जी आपके नाम भी करेंगे और मुना जी आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ इस वक्त बाबर शाह पे शहजादे तीन काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी और दीगर दोस्तों के नाम भी करेंगे। और आप जहाँ कहीं भी हैं ये गीत मेरी जन्म से आपकी नज़र होगा। लेकिन क्या है कि अब कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद आप जो है वो आप दोस्तों के लिए गीत पेश करेंगे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आवाज़ों में होगा। तो चलेंगे दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। और याद रखिए मेरा और आपका साथ जो है वो 2 बजे तक है। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, गीत होगा माते जाते हैं, गीत के बाद मिलते
2: हैं।
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू की मत भरी आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। आप चलते हैं जनाब, अगला गीत जो है पेश करने जा रहे हैं मेरी जानिब से आप सभी सुनने वालों के नाम होगा। जहां कहीं भी होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे होंगे, सनडा रेडियो को सुन रहे हैं, तो आपके नाम ये गीत किया जनाब। तो चलते हैं दो प्यार भरी आवाज़ें एक बार फिर कुमार सानू और अलका याग्निक की। तो चलिएगा, इंजॉय कीजिएगा इस गीत को, और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा

जी दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू और अलका यग्निक की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, और इसके साथ ही वक्त जो है वो बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद एक गुरदास मान की आवाज़ में धमाल होगी, क्योंकि खान भाई ने फरमाइश की थी किसी कवाली की, तो मैंने कहा कवाली का अब टाइम गुजर चुका है, क्योंकि अब वक्त नहीं बचता। कवाली थोड़ी लंबी होती है और ये धमाल भी थोड़ी लंबी है, लेकिन कवाली से कम लंबी है और बड़े मज़े की धमाल है। मैं गाए बगाए इसको प्रोग्राम में शामिल करता रहता हूँ। तो जनाब खान भाई, आपकी जानिब से फारूक भाई, बिशारत भाई और आतिफ भाई और शाह जी के नाम करते हैं, और इसी को नज़र करना चाहूँगा। जनाब ग़ुलाम भाई आप के नाम भी, और चौधरी रुखसार अहमद साहब हैं उनके नाम भी करेंगे, और आबिद भाई आप के नाम भी करेंगे, और इस वक्त इन शहज़ादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं उनके नाम भी करेंगे, और हीरा खान साहब और जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब और जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब की पूरी टीम और सभी दोस्तों के नाम करेंगे ये धमाल, और स्पेशली इकरा जी, नजमा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा, साइमा आपके नाम भी, और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे धमाल।

0: जी दोस्तों, अभी आपने गुरदास मान की प्यारी सुरीली आवाज़ में जो है वो अपना ये धमाल सुनी, और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का वक्त हो चुका है। तो चलते हैं, सुनते हैं जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी समीन, अभी आपने जहर की अजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:44, यानी कि 1:44 और इसका मतलब ये भी हुआ कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है। और कमर्शियल के बाद दोस्तों आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। गीत तो और प्ले करना था मैंने, लेकिन टॉम साहब का फ़ोन आ गया, कह रहे हैं जनाब हमारे लिए कोई अच्छा सा गाना लगा दें। मैंने कहा पुराने गीतों की बारी है, बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पुराना गीत हो या नया गीत हो, लेकिन गीत अच्छा होना चाहिए। तो आप, आपके साथ सबीना है इस वक्त और आप सबीना के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो जनाब उम्मीद रखता हूँ ये लता जी का और मुकेश का गीत आपको दोनों को ज़रूर पसंद आएगा। और उसके बाद ये गीत जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ, ये हमारी प्यारी बहना साजिया जी का भी फेवरेट गीत है, उनके नाम भी करेंगे, उनके साथ आजरा जी के नाम करेंगे, गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी करेंगे, और खान भाई आपकी पूरी टीम, और उसके बाद गजला जबीन बहना आपके नाम भी, और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम भी, भाई रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर में सुन रहे हैं उनके नाम भी करते हैं, जीत कौर बहना आपके नाम भी करेंगे, और उसके बाद वाजिद भाई एडसफील्ड में उनके नाम भी करेंगे, आबिद भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी करेंगे, दिनेश भाई आपके नाम भी करेंगे। दिनेश भाई शुक्रिया, आपने काफ़ी देर पहले हमें फ़ोन किया था। तो जनाब उसके बाद इसी गीत को तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी करेंगे, और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे, और दीगर तमाम जो दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद मुकेश और लता जी की आवाज़ों में प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए।

जी दोस्तों, अभी आपने लता जी और मुकेश की प्यारी सी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। इसी के साथ ही दोस्तों, मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। उम्मीद रखते हैं आज का प्रोग्राम आप साथियों को पसंद आया होगा। साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात इतवार के रोज़ सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: get it in, but it won't be for a few days.
1: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: रामलाल हो गया, कल का रामू आज सेठ रामलाल हो गया।
1: वो कैसे?
0: घर घर में उसी की चर्चा है, हर जुबान पर उसका नाम है, सब सनराइज रेडियो का काम है।
1: कैसे?
0: एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, अगर हम कमाना है तो अपना बिजनेस एडवर्टाइज कराइए। सनराइज रेडियो पर आइए, नंबर मिलाइए 735043। सनराइज रेडियो, मनी राइज रेडियो।

0: की कोई बात नहीं, ये तो सनराइज रेडियो का कमाल है। हमने सनराइज रेडियो पर एडवर्टाइज किया, ये उसी का नतीजा है।
1: आपने तो मेरी आंखें खोल दी।
0: ये एडवर्टाइजिंग का जमाना है, सनराइज रेडियो पर।

ये देखो इस शाम के दामन में क्या है, मध्यम मध्यम सी रोशनियों में धुन पे मचलते जिस्मों पर हल्की सी दमक, लहराती हुई संदल बाहें, बलखाती हुई रेशम जुल्फें, ये अंग अंग ये झलक झलक शीशों की खनक, शीशों को छूते नाजुक लब जिनमें शाम की सुर्खी है, हिरनी सी वहशी आंखों में अनजाने से पैगाम बसे, कोई देख के इनको बहके तो इल्जाम किसे, इन लम्हों के प्यालों में जितनी मस्ती है सारी की सारी तुम पी लो, इस शाम को जी भर के जी लो, कल जो भी होगा

एक शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच अज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दियां गल्लां खूब होईयां, बड़े अरसे दे दिल घबराए हुए सन, तको तकी अफजल अख खुल गई, जाम कौसर दे लबां नाल लाए हुए सन।

0: No, they don't have that part.
1: Have you tried down the road?
2: We can get it in, but it won't be for a few days.
3: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
4: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गईं पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
5: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
4: चाचा केड़ा चाचा
5: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
5: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

0: सेठ रामलाल हो गया।
1: वो कैसे?
0: घर घर मुंशी की चर्चा है, जुबान पर उसका नाम है, सब सनराइज वीडियो का काम है।
1: मगर कैसे?
0: एडवर्टाइजमेंट का कमाना है। अगर धन कमाना है तो अपना बिजनेस एडवर्टाइज कराइए, सनराइज रेडियो पर आइए, नंबर मिलाइए 735043। सनराइज रेडियो, मनी राइज रेडियो।

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: डिड यू नो रेडियो एडवर्टाइजिंग जनरेट्स एन एवरेज रेवेन्यू return of £7.70 for every pound spent. It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm 5043 or email sales@sunriseradio.fm.
3: My favourite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio and now I can listen on the move

0: Sunrise Radio, FM, DAB, online and mobile. Sunrise Radio.
1: Sunrise Radio. ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: Ladies and gentlemen,
2: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
3: Number one.

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-0434 पर कॉल करें।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
4: We love Sunrise Radio.
5: The greatest station, radio station in the world.
6: Sunrise Radio.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Sunrise Radio, FM, DAB, online and mobile.
1: गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।

0: गया, कल का रामू आज सेठ रामलाल हो गया।
1: वो कैसे?
0: घर घर में उसी की चर्चा है, हर जुबान पर उसका नाम है, सब सनराइज रेडियो का काम है।
1: मगर कैसे?
0: एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, अगर धन कमाना है

क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें